0: शायद मुझसे वो प्यार नहीं देता जो मुझसे चाहती थी।
1: वो अब तक नहीं जानता, जब जान जाएगा, अगर जान पाया

कब तुम्हें पसंद किया, कब तुम्हें जाने लगा और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता।